0: अरे क्या हुआ? अरे बोल बोल, अरे क्या हुआ बोल बोल, अरे हुआ क्या बोल ना, अरे अरे अरे बोल, अरे बोल ना,
1: अरे कुछ नहीं,
0: बोल बोल,
1: अरे कुछ नहीं हुआ भाई,
0: बोल ना भाई,
1: मुझे शर्म आती है।
0: क्या शर्म आता, बोल ना,
1: बोल दो,
0: बोल बोल,
1: बोल दो,
0: बोल
1: बोल दो,
0: बोल बोल,

0: हाय हाय,
1: एक बात बताऊं दोस्त?
2: बता बता, जल्दी बता।
1: एक बार वो मुझे मिलने आई।
2: अच्छा?
1: मैंने प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया।
2: फिर क्या हुआ?
1: उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल दी, बस दोनों देखते रह गए।

0: अरे भाई एक दिन उसका टेलीफोन आया। हाँ। कहने लगी
1: हेलो हेलो डार्लिंग
0: डार्लिंग।
1: हाँ
0: फिर क्या बोली?
1: बोली मेरे घर में पार्टी है आओ।
0: जब मैं वहाँ पहुँचा तो पता लगा वहाँ उसकी सिवा कोई भी नहीं था।
1: फिर क्या हुआ?
0: मैं था
1: वो थी
0: मैं था
1: तन्हाई थी
0: उस दिन।

0: अपनी मोहब्बत की खुशबू हवाओं में है।
1: मैं खुश हूँ कि तुम आज मेरी बाहों में हो।
0: मिलन की घड़ियाँ कितनी हसीन होती हैं, है ना?
1: हाँ।

0: उगता सूरज भी कितना खूबसूरत लगता है।
1: हाँ, मगर इसके बाद अंधेरा छा जाएगा।
0: मैं वक्त के कदमों को रोक लूंगा।
1: वक्त वो तो हमें बहुत पीछे छोड़ गया।